0: Mania Extreme Energy Drink.
1: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी।